0: ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, मुझे मुझे मुझे याद आया, मुझे याद आया, बिल्कुल याद आया यार। भाई दिमाग से थोड़ा सा हूँ ना, कमजोर हूँ, और कभी कभी अगर सुबह सवेरे आप चाय भी ना पिए ना, तो फिर तो बिल्कुल सिस्टम फिर स्लो होता है, मेमोरी मेमोरी स्लो से स्लो चलती है, तो धीरे धीरे याद आते हैं फिर।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यशवश, आप सुनाए ड्यूटी कैसी जा रही है? बस ये अल्लाह का रहम है आप लोगों पर, ये अल्लाह का रहम है आप लोगों पर, वाने के लोगों पर। जरूर जरूर हमेशा करेंगे, आप लोग भी दुआएं करें। खैर आप भी मुसाफिर हैं, मैं भी इधर मुसाफिर हूँ, तो दोनों मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है। मैं आपको करूंगा, आप मुझे किया करें तो इंशाल्लाह, क्या पता किसकी
0: प्रोग्राम जो है ना, ये और मुहर्रम की है, मुहर्रमुल हराम के बारे में थोड़ा सा इस चीज से बातचीत करें, ताकि
1: जी जी जी जी
0: साहबा इकराम जिन लोगों ने शहादतें की हैं।
1: बिल्कुल, असल में इब्राहिम एक सेंसिटिव टॉपिक है ना, तो इस वजह से मैं इस पे ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि तो इस वजह से आपको बेहतरीन पता है बाकी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो और
0: बाकी और खैरियत
1: है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
0: कोई एक नात ही सुना दे। चलो
1: चलो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई उर्दू वाला या पश्तो वाला एक नात प्ले कर दूं।
0: ठीक है, एक नात जो है ना जरूर सुनाने। ठीक है,
1: जरूर इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। इजाजत माना, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। चाहे रहे कोई भी हमारे साथ प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी आ सकता है, हमसे पूछ सकते हैं। अगर स्किन की मसाइल हो, बालों की मसले हो, या चेहरे पर दाने दाग दबे, उससे परेशान हो आप लोग, बिल्कुल नाउमीद हो चुके हो, आपने बिल्कुल जो है ना नाउमीदी का रास्ता इख्तियार कर चुका है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, रिजल्ट ना मिला है, अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, उसके साइड इफेक्ट या कोई और मसले आपको मिले, हम तो आप गारंटी देते हैं इज़ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की दो किस्म ब्यूटी क्रीम है, एक फार्मूला ब्यूटी क्रीम, एक 4-in-1 कंप्लीट गोली ब्यूटी क्रीम है। हम मनी पैक गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आपको देते हैं। अगर रिजल्ट ना मिल जाए तो वही शॉप पे जाए, प्रोडक्ट वापस कर दे, अपने पैसे वापस ले लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों की तरह बाकियों की तरह ये नहीं कहते कि हम जो है ना अपनी पूड़ों की सिफात करते कि हमारी हमारी ये हैं हमारी खुराक।

प्रोडक्ट में देते हैं, हम वही क्वालिटी है ना जो हमारी किसी भी प्रोडक्ट में होना उसी में हम देते हैं। हमारी सारी ब्यूटी जो प्रोडक्ट है हमारी, दो किस्म के ब्यूटी क्रीम है, दो किस्म के फेस वॉश है, तीन किस्म के ब्लीच है, इसमें हमने कोलिजन फार्मूला को भी शामिल किया।

इस्तेमाल करोगे, आपकी उम्र बहुत ज्यादा कम है, 20-25-26 साल है, लेकिन आप लगते हो 35-40 साल के, तो यही मसले आपने अगर कम करने तो फार्मूला ब्यूटी क्रीम भी सबसे बेहतरीन, या हमारी फेसवाश का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे बार बार इकनीज आ रहे हैं तो फिर आप लोग जरूर हमारी एलवेरा फेसवाश का इंतजाम करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। बहरहाल फिर भी आपको एड्रेस चाहिए, जो भी बात करना चाहते हो, हमसे पूछना चाहते हो, तो 0335 435 3515।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
4: منتخب اشما فارمولا فیتواج
5: زیا جمیل خان اشما غلا منڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
6: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
7: میں احمد خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
8: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین ان فوڈ کری
9: زمانم دا نقید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ کنکو
10: زیم لطیف

0: चढ़ाई मासी मिर्जी दार तो ये जो पदसा पर सीधे तसा हो कस्ती थी
1: जनाती से तारखाना पसा पर के हमें इसमा वाशिंग पाउडर हो कस्ती थी
0: इसमा वाशिंग पाउडर मड़ाई मिर्जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले होचे कराना में कुर्ता इसमा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े थी उस टूल कुर वाला नफासूल थी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उदार तो ये या कि इसमा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासूसियात थी
1: तारे खाना इसमा वाशिंग पाउडर खास खासूसियात दागा दी कि कपड़े सब यूजुअली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इसमा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना न कर पावी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दाव बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार किसे देश मां मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर सेब सर उधर ता मिला भी जी।

0: Omega on Radio Awan 88.4.
1: You are listening Radio Awan Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: It's 4 o'clock.
4: It's 4 o'clock.
3: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
6: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारस होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

0: जी जनाब, तीनों रेडियो स्टेशन
1: हाफिज़ो नासिर है अल्लाह।
0: जी जनाब, तीनों रेडियो स्टेशन डेयर इस्माइल खान ग्लोबल एफएम 91 पहाड़पुर में रेडियो पैगाम एंड टॉक में रेडियो अमन खिलाफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं हूं आपका मेजबान खलील ताबिश अमान। अपने डेली के प्रोग्राम केसन के केसन अचो पाकिस्तान के लाइव शो के साथ दोपहर की 4 बज चुके हैं।

0: का जिक्र।
1: जी जनाब, कैसे नजम पाकिस्तान के प्रोग्राम आप हर रोज सुनते हैं और आज भी मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ पूरा एक घंटा, यानी कि अब से लेकर ठीक पाँच बजे। जनाब सामने किराम, माह मुहर्रम माह तकद्दस का महीना इस वक्त चल रहा है और जैसे जैसे जैसे दिन जो है आगे बढ़ रहे हैं, आज 8 महरमुल हराम है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां सामीन किराम आगे बढ़ रही हैं, हर गुजरता लम्हा हर ढलता घंटा हमें करबला के उस अजीम और अजियत नाक मंजर की तरफ लेके जा रहा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई। ऐसी कुर्बानी सामीन किराम की जिसने इंसानियत की तारीख को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी जनाब, अपने प्रोग्राम के तसलसल को लेकर कैसे नेचुरल पाकिस्तान की बातें करते हुए इन दिनों को हम बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकते और एक इस अजीम कुर्बानी को बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकते और इसका जिक्र करना जिस तरह के हर घर के अंदर कोई बातें हो रही होती हैं इन दिनों के अंदर तो माहौल यकसर से बदल जाता है। हर घर के अंदर खैरात बन रही होगी, हर घर के अंदर जो है खैरात तकसीम की जा रही होगी, हर घर के अंदर जो है सबीलें लगाई जा रही होती हैं शरबत की, जूस की और इस तरह के खैरात का। ये कोई भी महल्ला खाली नहीं होगा, हर महल्ले के अंदर 8 मुहर्रम से लेकर बकरी के मुहर्रम से स्टार्ट हो जाते हैं ये सारे काम। बेसिकली मुहर्रम को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है वो इसी तरीके से है कि जनाब खैरात का बंदोबस्त किया जाता है, जगह जगह आपको सबीलें लगी हुई नज़र आती हैं। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल जनाब, इन चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं, ठीक है जनाब, और इनको साथ में लेकर, लेकिन असल जो सबक हमें इस कुर्बानी से मिलता है, ठीक है जनाब, जो सबक मिलता है उसको, ये एक मोहब्बत का इजहार है अहले बैत के साथ, आले मोहम्मद के साथ सबीलों का लगाना, नियाजों खैरात वगैरह का करना, ठीक है जनाब, ये उनसे मोहब्बत का हमारा इजहार है और हम उनसे इजहार कर रहे होते हैं, ये अकीदत भी है, मोहब्बत का इजहार। जी जनाब, मोहब्बत का इजहार है, लेकिन हुसैनियत का सामीन कराम जो असल पैगाम है, सबक है, वो इससे कहीं गहरा है, इससे कहीं गहरा सबक है जो हम जो इन चीज़ों के अंदर ये ज़रूरी है, अकीदत का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर, इन रस्म व रिवाज के अंदर वो पैगाम जो है ना कहीं गुम हो जाता है, ठीक है जनाब। वो जो पैगाम है ना हुसैनियत का, इमाम हुसैन का जो वो पैगाम है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। और वो क्या है, हम तीसरा चौथा दिन एक ही बात कर रहे हैं, जो करबला का पैगाम है ना वो ज़हन नशीं हो जाए, हमें करबला का पैगाम जो है वो ज़हन नशीं हो जाए। और कौन सी बात ज़हन नशीं करनी है, जिस चीज़ की आजकल के दौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है जनाब, आजकल भी यजीद हमारे जहनों के ऊपर, हमारे ऊपर हावी है, और वही जो आज से 1400 साल पहले जो साया खौफ का लोगों के ऊपर था, ठीक है जनाब, वो लोग जिनके ईमान कमज़ोर नहीं थे, कमज़ोर थे ना, इमाम हुसैन तो ईमान वाले थे तो वो डट के खड़े हो गए, लेकिन यजीदियत का खौफ जो उस वक्त था वही यजीदियत का खौफ आज भी लोगों के अंदर मौजूद है। इसलिए मौजूद है कि हमने हुसैन के करबला के उस सफर को, उस सबक को अपने जहन में बिठाने की कोशिश नहीं की कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मतलब क्या है इस बात का, मतलब क्या है इस बात का,
0: मौला दिल
1: जनाब, जुल्म के सामने सीना तान कर डट जाना, ये हुसैन का पैगाम था, ठीक है जनाब, ये हुसैन का पैगाम है। और हालात आपने देखे, आप दास्तान करबला में हमारे साथ सुन रहे हैं कि कितने लोग थे, 72 लोग थे टोटल, 72 जानिसार थे आगे से, लाखों का लश्कर, लेकिन खौफ नहीं था, डर नहीं था। और यही पैगाम है कि रहती दुनिया तक के लोगों के लिए कि हर दौर में यजीद होगा, हर दौर में हुसैन होगा, लेकिन आपने हुसैनियत को पकड़ना है,

0: जी जनाब, ये हमारा केसन का सिरप, आप सोच रहे होंगे ये इसकी प्राइस क्या है, तो आपको बताते चलें कि जनाब इसकी जो कीमत है, इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपये है। ठीक है जनाब, इस वक्त अच्छी कंपनियों के जो मैदे के सिरप है ना, सबसे इकोनॉमिकल हमने रखा हुआ है, सबसे इकोनॉमिकल, क्योंकि पहला जो हमारा बैग था 5,000 का, वो बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गया। फिर उसके बाद हमने जो नया बैग तैयार किया, उसके बाद मैंने खुद से इसकी 30 रुपये कीमत कम की है। इसकी कीमत पहले 180 होती थी, लेकिन आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत इसके ऊपर हमें मिली और मैंने इसको मज़ीद जो है हमने 30 रुपये कम किया है। तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मैदे के अमराज के लिए हमेशा हमेशा केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप ही लेना पसंद करेंगे, किसी और सिरप को आप नहीं लेंगे। और
1: हुसैन
0: आपके जेब के ऊपर बिल्कुल भी भारी नहीं है और आपके बॉडी को, आपके मैदे को ठंडक पहुंचाने वाला और आपके जो मैदे के जितने भी मसाइल हैं उनको ख़त्म करने वाला ये सिरप, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, डेरा इस्माइल खान में हर बड़े मेडिकल स्टोर और कॉस्मेटिक स्टोर पर जहाँ पर केसन के अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टांक में जहाँ पर केसन के अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पर आपको ये मिलेगा, और पहाड़पुर में भी हर जगह पर मेडिकल स्टोरों के ऊपर भी, कॉस्मेटिक स्टोरों के ऊपर, कॉस्मेटिक स्टोरों के ऊपर जो है मैदे के सिरप नहीं होते हैं। ठीक है जनाब, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी सुर्खी पाउडर वाली दुकान के ऊपर जो है कोई मैदे का सिरप भी पड़ा हो, लेकिन चूंकि केसन बेसिकली तो कॉस्मेटिक कंपनी है। ठीक है जनाब, तो चूंकि हमारे कस्टमर ने जाना होता है कॉस्मेटिक स्टोर के ऊपर, तो ये हर कॉस्मेटिक स्टोर पर भी मौजूद होता है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सिरप लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर के ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी जो होती है वो कॉस्मेटिक स्टोर, जनरल स्टोर, जहाँ पर केसन के प्रोडक्ट होंगे वहाँ पर आपको वेट कम पेट कम वजन कम करने वाली प्रोडक्ट मिलेगी। हमारा जो पेन किलर ऑयल है वो भी आपको हर जगह मिलेगा, और इसी तरीके से केसन का ये जो हमारा सिरप है ये भी आपको हर जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, डेरा इस्माइल खान, पहाड़पुर और टांक में हर जगह पर मिलेगा।

0: जी जी ना, मुझे कहते हैं खलील दावे जमान, और इस वक्त आप अपने शहर के FM के ऊपर किस नेच पे पाकिस्तान का प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: है
0: प्रोग्राम के अंदर हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है दास्तान कर्बला का, और दास्तान कर्बला को मुख्तलिफ तारीख दानों ने मुख्तलिफ तरीकों से लिखा है, और हम कोशिश करते हैं कि वो वाकयात आपके सामने हम पेश कर सकें कि जो कि हकीकत पर मबनी हो और जो कि मुतफिक तौर पर उनकी रिवायात हमें तारीख के कुतुब से मिलती है।

0: मेरे किराम, जब कर्बला के मैदान में अंसार और अकारिब एक एक करके शहीद हो गए, कट गए, तो इमाम हसन के यतीम 13 साला शहजादा कासिम खैमे से बाहर आए, चचा के कदमों पर गिर पड़े और मैदान जंग में जाने की इजाजत तलब की। इमाम हुसैन अपने भाई की इस प्यारी निशानी को कैसे मौत के मुंह में भेजते, क्योंकि सामिन किराम जैसे कि आप तारीख को पढ़ते हैं, जो भी खैमों से जाता था उसकी लाश वापस आती थी, कोई भी जिंदा सलामत वापस नहीं आता था। तो खैमों से किसी को भी मक्तल की तरफ भेजने का मकसद ये होता था कि ये अलविदाई मुलाकात है, इसके बाद इसने वापस जिंदा नहीं आया।
1: तुझे सलाम।
0: इमाम हुसैन अपने भाई की इस प्यारी निशानी को भला कैसे मुंह में भेज दो। चचा और भतीजा एक दूसरे के गले लगकर इस कदर रोए कि दोनों पर गशी तारी हो गई। आखिरी मुलाकात, अलविदाई मुलाकात, चचा और भतीजे की मुलाकात।
1: जो को प्यासा रुलाया गया जिनके
0: क्रांबिल आखिर जब कासिम मैदान में गए। अच्छा, सुबह रेडियो प्रोग्राम के ऊपर हमने शहजादा कासिम की जो शहादत है उसको बहुत ही तफसीलन बयान किया है, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ शहजादा कासिम को, तो ये थोड़ी सी मुख्तसर लेकिन इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहूँगा वाकिया के। कहते हैं रिवायात में है कि हजरत हसन जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने बेटे कासिम शहजादे कासिम को कागज़ का टुकड़ा, एक तवीज़ जो है उनके बाजू पर बांधा था और कहा था कि बेटा इस तवीज़ को उस वक्त खोलना जब देखना कि तुम्हारा चचा जो है बहुत परेशानी में हो, सख्त तकलीफ में हो, और उस तकलीफ में अपने चचा की तकलीफ को देखते हुए ना अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग मत करना। तो कहते हैं कि पहले हजरत इमाम हुसैन उन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे, बड़े भाई की निशानी थी कासिम शहजादा कासिम, लेकिन जब शहजादा कासिम ने वो तावीज़ खोला तो उसके अंदर यही इबारत लिखी हुई थी जो मैंने आपको अभी बताई है। तो वो इबारत जो है शहजादा कासिम ने अपने चचा के सामने रखी और फिर चचा ने मक्तल में जाने की उनको इजाजत
1: दी। सताया गया जिनके बच्चों को प्यासा रुला।
0: जनाब कहते हैं कि शहजादा कासिम जो थे उनको हजरत इमाम हुसैन ने खुद तैयार किया, और जो जंगी सामान होता है, जो तलवार सौंपनी होती है, जो जीरा लगानी होती है या सर के ऊपर जो टोपी पहनानी होती है, तो हर चीज उससे बड़ी थी। छोटे थे, 13 साल के थे, तो यहाँ तक के कहते हैं कि वो जब खड़े हुए तो तलवार भी जमीन को जाके लग रही थी। ठीक है, जो लिबास था जंग का वो भी उनको पूरा नहीं आ रहा था। अपने बाबा की बात, अपने चाचा के लिए जान देने का जज्बा
1: कर्बला
0: में नहीं रोक सकता।
1: तो
0: कहते हैं कि गए जनाब और मक्तल में गए बड़ी हिम्मत के साथ, 13 साल के
1: सब
0: जो अभी जवानी को भी ना पहुंचा हो शहजादा, शहजाद की जोहर दिखा है, प्यासे होने के बावजूद, भूखे होने के बावजूद
1: कर दिया,
0: शहजाद की जोहर दिखा है, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने उस नन्हे मुजाहिद को चारों तरफ से घेर लिया और एक जालिम ने पीछे से आकर शहजादा कासिम के सर पर तलवार का वार किया, सर पर, और कासिम घोड़े से जमीन पर गिरते ही उन्होंने आवाज दी, या आमाज, आए मेरे चचा जान, मेरी मदद को आई।
1: सलाम या हुसैन, जिसको दोषे नबी पर बिठाया।
0: जनाब जब इमाम हुसैन बाज की तरह झपट कर कासिम के पास पहुंचे, बाज की तरह, ये लफ्ज लिखे हैं रिवायत में, बाज की तरह झपटे अपने प्यारे भतीजा के, क्या देखा, क्या दिल खराश मंजर था। गर्दो गुबार छटा तो देखा कि यतीम हसन एड़ियां रगड़ रहा है और घोड़ों के सुमों ने शहजादे के लाशे को पामाल कर दिया है।
1: सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे
0: हुसैन। हजरत इमाम हुसैन ने कहा قاسم تمہارے چچا پر یہ کتنا گرا ہے کہ تم اسے بلاؤ اور وہ تمہارے کام نہ آ سکے۔ چچا نے بھتیجے کے ٹکڑے امام قاسم شہزادے قاسم کی لاش کے اوپر کہ جو سموں کے نشانات تھے وہ تھے، اور کہتے ہیں روایات میں ہے کہ ان کی جو لاش تھی وہ لمبی ہو گئی تھی، اس طرح سے گھوڑے کے سموں سے جو ہے پامال کیا گیا تھا شہزادہ قاسم کی لاش کو، کہ ان کی جو قد تھی اس سے جو ہے ان کی لاش وہ بڑی لمبی لگ رہی تھی۔
1: بٹھاتے رہے اس حسین ابن،
0: جناب اپنے بھتیجے کی لاش کو کہتے ہیں کہ خیمے میں آئے، اور خیموں میں کہرام مچ گیا۔ قاسم کی لاش کو دیکھ کر جو خواتین تھیں انہیں دیکھ کر ایک کہرام سے، اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ قافلہ حسینی کے اندر ایک شخص ایسے تھے کہ جن کی جو شکل مبارک تھی نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ خاندان میں ایسا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی کہتے ہیں دادا پر گیا ہے، کوئی کہتے ہیں نانا پر گیا ہے، کوئی کہتے ہیں باپ پر گیا ہے، کوئی کہتے ہیں ماں پر گیا ہے، تو نقوش تو ہوتے ہیں ایک خاندان کے اندر جو ہے۔ تو اہل بیت کے اندر، آل رسول کے اندر یہ جو ہے تاج کس کے سر آیا کہ اس کی شکل مبارک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ وہ تھے جناب شہزادہ علی اکبر، شبیہ پیغمبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ان سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ عاشورہ کا دن وہ منظر تصور کریں سامعین کرام، جب امام حسین کا 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر میدان کی طرف چلا۔ یہ وہ بیٹا تھا، اس سے پہلے امام حسین صبر دیکھیے جناب، آل محمد کے صبر تو دیکھیے، ایک لاش کے بعد دوسری لاش، دوسری کے بعد تیسری لاش، اور رشتے کیسے، کوئی بھتیجا ہے تو کوئی بھائی ہے تو کوئی

जनाब, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त दानिया मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान से, और वो जो बात करने जा रही है ना, फिर मेरे गले पड़ जाएगी। और बात कौन सी करने जा रही है, क्योंकि जिसके मैसेज हमें बहुत हर रोज आते, कुछ लोगों को हमने भाई वजन बढ़ाने वाली फक्की के सैंपल दिए हैं, ठीक है जनाब, और उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन अभी हम इसको बैच को तैयार नहीं कर पाए। तो वो फिर वही बात कर रहे हैं कि सलाम भाई, कैसे हैं आप, आपका शो बहुत ज़बरदस्त है। और भाई कुछ दिन गायब रही, मैं बिजी थी भाई, आपकी वजन बढ़ाने वाली फक्की खाई है, कमाल की है। अभी तो मैंने सही तरतीब से नहीं खाई है, फिर भी इतना असर हुआ है भाई, हाजमा कंट्रोल सिरप और फक्की मैं लेने आऊंगी दानिया, ठीक है, जरूर आइएगा। और मैं आपको अभी तक देखें, फिर लोग मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आई, उसका प्रोसेस है कुछ, इंशाल्लाह उम्मीद है महरम के बाद जो है आप लोगों को हम वजन बढ़ाने वाले, सप्लीमेंट है, पक्की नहीं है, बेसिकली सप्लीमेंट है, वो आपको मिलेगा। और ये दोनों जिसको कमजोरी हो ना, जैसे मैं आपको बता रहा था भूख की कमी, तो ऐसे लोग जिनके वजन बहुत कम है, दुबला पतला सा जिस्म है, वो हाजमा कंट्रोल सिर्फ साथ में जरूर यूज करें, ठीक है जनाब। वो क्यों यूज करें, यानी कि वो वजन बढ़ाने वाली फक्की और हाजमा कंट्रोल सिरप, ये दोनों आपको मोटा करेंगे, आपके जिस्म को वजन वजनदार बनाएंगे, गोश्त आएगा, क्योंकि हाजमा कंट्रोल सिरप आपको भूख लगवाएगा, भूख ज्यादा लगेगी तो ज्यादा खाएंगे। और दूसरा ये फूड सप्लीमेंट है जिसके अंदर काजू पिस्ता बादाम और दूसरी चीजें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपका वजन बढ़ाएंगी, ठीक है जनाब। तो ये दोनों मिलके खाएंगे तो बहुत ही, इनको हमने इसी तरीके से दिया था एज ए टेस्ट, तो आई थिंक इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है दोनों चीजों से, जैसे कि खुद बता रही है कि मैंने सही तरतीब से खाई भी नहीं है और उसका इतना इफेक्ट आ गया है कि ताकत महसूस होने लगती है ना उससे। तो आज भी मुझे बहुत सारे मैसेज लोगों के आए हैं कि वजन बढ़ाने वाली फक्की, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि हम दूसरे प्रोडक्ट से जान छुड़ा कर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो गए हैं, तो हर किसी हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेंटेन करना वो सरदर्द होता है बाजू का। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है, जून में आप लोगों के साथ वादा किया था, आज 24 तारीख हो गई है, 27 तारीख से फिर से रूटीन स्टार्ट होगी, तो जून के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जुलाई के 10 दिनों के अंदर जरूर जो है हमारी भरपूर कोशिश होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं बाद में इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट बहुत लेट हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा तलब कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक अवेलेबल नहीं हो रही, लेकिन हमारे ट्रायल जो है सक्सेसफुल रहे, ठीक है जनाब। ये आपको बताएं कि आप जो भी खरीदेगा वो 700-800 या 1000 रुपए की होगी, तो ये ना समझे कि पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो हमने इतना वक्त लगाया है लोगों को टेस्ट करवाने के लिए, यही बातें जिस तरह सारा मंदरा कलां से हमारे साथ होती थी, उनको हमने एक सैंपल दिया था कि आप ले जाएं ट्राई करें, उसके बाद वो खुद 4 सैंपल के पैसे दे के गई हैं कि भाई मुझे पैसों के साथ दे दें, मेरे कजनों को चाहिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इनिशियली जो है हमने ट्रायल पैक दिए थे लोगों को, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये वेट गेन फार्मूला, केसन का वेट गेन फार्मूला, ठीक है जनाब, वजन बढ़ाने वाला, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे कहते हैं खलील ताबे शमान, ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान में सुनने वालों से इजाजत, पहाड़पुर में रेडियो प्रोग्राम को सुनने वालों से इजाजत चाहूंगा, और टांक में रेडियो अमन को सुनने वालों से इजाजत चाहूंगा। आपसे मुलाकात होगी कल, कल तक के लिए इजाजत।

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुलायो रास। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम दमक धनो पेरसरो हल्को चियानो और दमक विष्टानु तपारा। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम उस्तासो पुखपल हार डिस्ट्रिक्ट टांग के हपासा न मिले विदेशी पोहर मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर के अवेलेबल दी। नो नामी या सते नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला रास। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।